Porque एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुझी हर सच्चे सृजन हारा सब जीत माड़े जीत तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर मन अंतर जी हर एक पुरख समाणा

पहला तित सर्वरडाई पई लिन वासा पाणी पावक तन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा दह डूबियले मन एक न चित समूह बना हर बिसरत तेरी गुण गलिया रहाओ ना हूं जती सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तो नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिरन की एह तेरी बरिया खबर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग भाव जल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा जप तप संजम धर्म नख माया सेवा साध न जानिया हर राया कहु नानक हम नीच करमा शरण परे की रखो शर्मा।

भाव निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकि एक बार चाउ पई को कह चाउ पई। संबत 1750 जाए अर्ध सहस पुण तीन कह जाए। भाद्र सुधी अष्टमी रवारा तीर स्तद्र ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पखियानी त्रिय त्रित्रेय मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा। 10 जान कर 10 पर कीजा कृपा अपार आप हाथ धरा। मोहे मन क्रम बचन विचार चाउ पई। मैं नागरे सह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ। कान सुने पहचान न 300 लिब लागी मोरी पागिन सौ। महाकाल रखवार हमारो महलो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार बाहे गह के लाज बिचारो। अपना जान बुझाए प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चलाए राखे आप मोहे और नंद लाए। तुम माम करो सदा प्रतपारा तुम साहिम दास निहारा। जान प्रणाम जन वाजो आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीबन वाजा।

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज स्थिति मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गाबड़े आया शब्दों तक गावू हरि के राम मन जनी बसाया

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: विघ्न विनाशन सोए।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा श्री सतगुरु।

ज्यो ज्यो चला चुबह दुख पावह। जम काल सह सिर डंडाहे, हर जन हर हर नाम समाने। दुख जन्म मरण भव खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बहु शुभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा,

0: गुरप्रसाद किन लह जाते, सुनो बिनो प्रभु मेरे निता, चरण कमल बसह मेरे चीता।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: नानक एक कर

मुख एक करह अरदास। विसरनाहि पूर्ण गुण तास, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसाहांदै शाह, जिस पास बैठे आ सो ही है, सबना का विसार। जिस पास बैठे आ सो ही है,

उर्ध अर्धंग अगंग ओघरता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा संदाता दयालं छेदी भेदी अनाम काम समस्त उपराधी समस्त स्थाम तेरा जो चात्री छंद जले हैं थले हैं पीत है पेय है प्रभु है जू है दूसर देश है पेश है जले हैं थले हैं पीत है पेय है प्रभु है अजू है दिश है पिस है उपजाह प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी सुपे नमस्रम्बानी समस्त निदानी नमस्त वंग निर्नाथे नमस्त वंग परमाथे नमस्त वंग अगंजे नमस्त वंग पंजे नमस्त वंग अकाले नमस्त वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साह साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो पमतारंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीव नमो बी बीजे अखिजे पिजे समस्त प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्व धैर्य दिशदंग निवासी चरपट छंद तव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखर जोगी अचर भोगे अचल राजे अटल साजे अखर त्रिमंगला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पारु सर्व मान त्रिमान दे पे वादु दारु सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपुण कालु जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप निसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख याद पुरख हजार मूर्ता जौन आदर्श एक देश और न पेह जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैले अर राग नाम काम विहीन पेख तम न जाय सर मानस सर्वत्र मानस दय मन ताहे एक मूर्त नेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फे एक दे पे न जानी जेह बेद और कतेब रूप रंग न जात बासो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर पिराई चतर चक मान पुरती नव लोग चौदह की विखाए जग जापे जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यु सबह जि थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्वस्वृत्य सुजम पवगण भजन हार कालहीन कला स्नुत काल पुरखा देश धर्म धाम स परम रथ पूत लख पेस अंगरा ग्रह रंग जाके जात पात नाम गर्भगंजन दुष्ट भजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अस्त पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्वभंजन आदि रूप असूत अंगहीन भागनात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतियन भेक सर्वशासना जारी जेह रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जाके अनेक भाग नेतो कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवे बचेतो मद पर छंद त्व प्रसाद गौन गण उदार महिमा पारासन भंग उपमा नांगन भव प्रकाश निस्तन नास आदिन बाहु साहन साहु राजन राज पान पान देवन देव उपमा महान इंद्र इंद्र बालन बाल रंग कारणक कालन काल अन्न भूत अंगाबा भंग गात मित पार गुण गण उदार मुनगन प्रणाम निर्भय ने काम प्रचान मित गत अखंड आलिसा कर्म दिशा त्रम सर्वा प्रणाड अंडन बाडै चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंद मकंदे उदारी अपारी हरियं करिंग नामी अकामे भुजंग प्रया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाली चतर चक्र काली चतर चक्र पासी चतर चक्र वासी चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिशा अदिशा अदृशा कृसाई भगवती छंद त्व प्रसाद कस्ते के अछज दिशा के अभिज पिस के अगंज करम के अपंज भरम के अभिज लोक के अदुत सुख के अवधूत भरण के विभूत करण के राज प्रभ के त्रमंग तुजैक सुख भरण के सर्वा भरण के जगत कृतियंक छत्रंग छत्रियंक ब्रह्मंग स्वरूप

जी अंदर जो सब जान लो सब तेरे वास्ते तेरा कर पला तेरा कर नंद उदय तुद कर मान महता तेजे अपने आप जर सर्व कला भरपूर दिशा जत कता

नानक सो प्रभ जाप, नानक सो प्रभ जाप। तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, महाराज महाराज महाराज महाराज। आनंद गुण निधान।